गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर, तुम्ही ट्यून केले MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और काम है बस आपका मनोरंजन करना। आणि वेळ झाली एक्झॅक्टली 7:12 एकदम मस्त मजेत तुम्ही असायलाच पाहिजे यार, क्योंकि आज का नए दिन का शुरुआत होने वाला है और आज है फ्रायडे शुक्रवार, म्हणजे शुक्रवार है, एकदम रिलीफ वाला फील है। इसी के साथ आज 31 जुलाई है और जुलाई का आखिरी दिन, तो ये भी महीना अब गुजर रहा है। देखते देखते भाई 7 गुजर गए 2026 के। और एक बात याद रखिएगा, जब कोई भी चीज़ का एंड होता है ना, तो अच्छे की शुरुआत के लिए होता है। वो कहते ना कि अंत अस्थि प्रारंभ, एंड इज जस्ट बिगिनिंग। सो इस बात को याद रखिएगा, जुलाई मंथ आपका कैसा भी गुजरा हो, अब जो आखिरी है उसको वहां पर छोड़ दीजिए और कल से जो नया महीना शुरू होगा उसका आगाज कीजिए। एंड इज जस्ट बिगिनिंग, इतना याद रखिए। बाकी मुस्कान की चमकान बरकरार रखते हुए आज के शो का आगाज करते हैं, कुछ मेरी और कुछ आपकी बात करते हैं और ढेर सारे नगमों के साथ बहुत सारी बातें इंफोटेनमेंट के जरिए जानते हैं। बहुत सारी बातें होगी, तब तक के लिए लौट कर आता हूँ कुछ ही देर में। स्टे ट्यून।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM। एक जमाने में एक लड़का था, नाम था राघव। सोशल मीडिया का वीर था, बिना कैप के सुपर हीरो, लेकिन कमेंट सेक्शन का राजा। सुबह उठते ही टूथब्रश से पहले लोगों की रील पर कमेंट करना उसका एक डेली रूटीन बन चुका था। किसी ने डांस किया, भाई पैर तोड़ दे लेकिन ये मत कर। किसी ने अपनी माँ के साथ वीडियो बनाया, सिंपैथी के लिए व्यूज चाहिए इसको तो। और किसी ने मोटिवेशनल बात की, कितना फेक लगता है भाई तू, ऐसे वो कमेंट्स करता था। राघव को लगता था कि उसका ऑनेस्ट ओपिनियन दुनिया को सच दिखाता है। उसके हिसाब से मैं ट्रोलिंग नहीं करता, मैं रियलिटी चेक करता हूँ और रियलिटी चेक देता हूँ। लेकिन एक दिन उसने अपनी एक सेल्फी डाली, कैप्शन था फीलिंग गुड न्यू बिगिनिंग। 10 मिनट में एक कमेंट आया, आंखों में ज्यादा कॉन्फिडेंस मत दिखा, सूट नहीं करता है। और दूसरा कमेंट आया, बस भाई अब तू भी इन्फ्लुएंसर बन गया क्या। राघव हिल गया। पहली बार उसने महसूस किया कि एक कमेंट सिर्फ कमेंट नहीं होता, कभी कभी वो सीधा कॉन्फिडेंस ही तोड़ देता है। उस दिन के बाद राघव थोड़ा बदल गया। अब जब भी किसी वीडियो पर गुस्सा आता वो फोन हटा देता और ट्रोलिंग करना किसी और को बंद कर दिया था। और हाँ, अब राघव ट्रोल्स का आंसर नहीं देता, उसके लिए सिर्फ एक लाइन लिखता है, भगवान तुम्हें भी क्रिएटिविटी दे। ऐसे कमेंट्स करता और अच्छे कमेंट्स करता। ये बात उसे तब समझ में आई जब उसे किसी और ने ट्रोल किया। आज के ज़माने में हम देखते हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी और की वीडियोस पर ना तो ट्रोल करते हैं, गंदे कमेंट्स करते हैं और खुद को बहुत महान समझते हैं। मेरी जान, आप महान नहीं हो, याद रखिएगा। सो इस कहानी का उद्देश्य यही था कि जब किसी और को ट्रोल कर देना, उन पर बात आती है ना, तो तब जाके उनके समझ में आता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तो अभी वक्त है गलतियाँ सुधारिएगा, इस कहानी का यही उद्देश्य था। और किस्सों का कारवा में ऐसी कहानियां सुनते रहिएगा।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी लाइफ। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। सुबह का वक्त है, अब तक आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। और एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि वॉकिंग के लिए चले जाए या जिम के लिए चले जाए, इन दोनों में से बेस्ट क्या होता है? तो सिंपल, इसमें डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से बताऊंगा। कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई फीस नहीं, हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है। वेट लॉस प्लस हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा है, स्ट्रेस कम करता है और मूड फ्रेश करता है। ये क्या है? वॉकिंग करना। ये एकदम इजी, फ्री एंड कंसिस्टेंसी से भी आप कर सकते हो। देखो, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, बहुत बिजी हो, जिम को अवॉइड करना चाहते हो, लेकिन रूटीन लाइफ में हेल्दी रहना चाहते हो, तो वॉकिंग इज बेस्ट। अब आते हैं जिम पर। जिम पावर, स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी टोनिंग और मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट है। फास्ट रिजल्ट चाहिए और डिसिप्लिन और रूटीन बनाना है तो जिम बेस्ट है। अगर गोल है बॉडी को पूरा बदलना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो जिम इज बेस्ट। देखो, फाइनल दोनों का मकसद एक ही है, हेल्दी और फिट रहना दोनों का मकसद है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या चुनते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट कब से करते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर चलना या 0 किलोमीटर सोचने से हमेशा बेटर होता है। तो चलते रहो, फिट रहो और हिट रहो। स्टे ट्यून्ड।

अपना छत्रपति संभाजीनगर स्मार्ट तरीके से स्मार्ट डेवलपमेंट की तरफ गुजर रहा है ऐसा अब नजर आ रहा है। हेलो, माय सेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अपने शहर को स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लाता ही है जिससे अपना शहर तरक्की कर सके। और आपने कुछ ऐसे बसेस भी देखे होंगे, स्मार्ट सिटी बसेस जो कि इलेक्ट्रिक है एंड अपने शहर के रास्तों पर भागती, आपने ये चीज नोटिस भी की होगी और बहुत अच्छी ये बसेस है। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर तकरीबन 8 और स्मार्ट सिटी बसेस अपने शहर में आने वाली है जो कि स्मार्ट तरीके से अपने शहर के रास्तों पर चलती हुई आपको नजर आएगी। और ये पूरी 35 बसेस है जो कि अपने शहर में आने वाली है 15 अगस्त के पहले पहले तक, और 15 अगस्त के बाद ये अपने शहर के रास्तों पर हमें भागती हुई नजर आएगी। तो ये स्मार्ट सिटी बसें स्मार्ट तरीके से वो भी इलेक्ट्रिक वाली अपने शहर में अब लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए काम करने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो भाई, आप स्मार्ट सिटी बसेस ला रहे हैं शहर में

बरसात के मौसम में पहाड़ों पर जाना हर किसी को पसंद है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर अब आपको नो एंट्री मिलने वाली है। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM। आपल्या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये अनेक असे ठिकाणे आहेत ज्या ठिकाणी आपण पावसाळ्यात जातो, एन्जॉय करतो, ट्रेकिंग करतो। यासोबतच ऐतिहासिक बौद्ध लेणी आपल्या शहरात आहे, हनुमान टेकडी आहे आणि विद्यापीठ परिसरातील डोंगर रांग आहेत। या ठिकाणी सुद्धा अनेक जण जात आहेत आणि पावसाळ्यात एकदम मस्त एन्जॉय करतायत, रील्स वगैरे काढतायत। करतायत ना हे सगळं, ऐसा आप भी करते हो ना। सो इन जगहों पर ना तो आप नो एंट्री होने वाली है, बिकॉज देखो इस जगह पे बहुत सारा यूथ आता है और कुछ कुछ ऐसे भी लोग आते जो यहाँ पर आकर पहाड़ों पर बैठकर दारू वारू पी रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे। ये सब चीजें वहाँ पर हो रही थी और क्राइम भी बढ़ रहा था। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ऐसा फैसला लिया है कि बौद्ध लेनी एंड हनुमान टेकड़ी इस एरिया में शाम 6 बजे के बाद टोटली नो एंट्री रहने वाली है। शाम 6 के बाद ना तो आपको यहाँ पर जाना मना है, वरना आपने अक्सर देखा होगा कि लेट नाइट 11-12 बजे तक लोग हनुमान टेकड़ी के ऊपर बैठते थे और लेट नाइट आते थे, फिर उसके बाद दारू सिगरेट ये सब चीजें वहां पर पार्टी चलती ही थी और इससे फिर आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा था, वहां पर जो घूमने आते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रहा था एंड क्राइम ना बढ़े, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। तो आप लोग भी याद रखिए, अगर आपका भी प्लान होगा कि चलो यार लेट नाइट शाम में रात में हम ऐसे टेकड़ी पर जाकर बैठेंगे तो मत जाइएगा, पछताना पड़ेगा आपको और पुलिस प्रशासन के वहां पर गश्त तो रहने वाला है। आपको वहां पर नो एंट्री, आपको क्या किसी को भी शाम 6 बजे के बाद हनुमान टेकड़ी एंड बौद्ध लेनी इस एरिया में नो एंट्री रहने वाली है। तो ये याद रखिएगा, बाद में मत कहना कि यार मुझे तो पता ही नहीं था, अब पता चला गया तो समझिए। एंड बाकी तो कहीं और घूमिएगा और सुनते रहिएगा।

0: उम्र भर दिल में एक हंसी याद रही, सदियां बीत गई पर बात याद रही, न जाने क्या बात थी उनमें और हम में, न जाने क्या बात थी उनमें और हम में, सारी महफिलें भूल गई, बस आवाज याद रही, बस आवाज याद रही। सो ये आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की।
1: दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने।
0: वो कहते हैं ना कि यार कुछ कुछ सिंगर ना तो अमर हो जाते हैं, और उनकी आवाज हमारे दिल में, हमारे जहन में एक अलग सा घर बना लेती है। चाहे फिर कितने भी साल बीत जाए, कितने भी सदियां बीत जाए, वो आवाज हमेशा उतनी फ्रेश हमें सुनाई देती है। तो ऐसी आवाज है मोहम्मद रफी साहब की, वन ऑफ द पॉपुलर सिंगर। क्लासिकल सिंगिंग हो, फिल्मी गाने हो, गजल हो, कव्वाली हो, प्यार भरे गाने हो या तो फिर दुख भरे गाने, इन सभी में माहिरत हासिल थी द पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब को। और आज हम मोहम्मद रफी साहब की ही बात करेंगे, उन्हीं के कुछ किस्से जानेंगे और उन्हीं के गाने आज हम सुनेंगे। सो जीतनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। वैसे मोहम्मद रफी साहब का जो मिजाज था ना, तो बड़ा ही प्यारा था और बड़ा ही दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला था। इतना प्यारा मिजाज होने के बावजूद भी लता मंगेशकर जी के साथ थोड़ी बहुत उनकी तूतुमैमे हुआ करती थी। आखिर ये तूतुमैमे किस बात पर होती थी, क्या थी ये कहानी, क्या था ये किस्सा, बताऊंगा आपको कुछ ही देर में। उसके पहले एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये अगला सुपर हिट गाना, एंड स्टे ट्यून विद आर चेतनान ऑन MGM 90.8 FM।
2: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल बनायचे,
3: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग। सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन,
2: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
3: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री विजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स,
2: लिमिटेड सीट्स। आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891 7844।
4: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च, और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। MGM यूनिवर्सिटी, इंस्टिट्यूट को छत्रपति संभाजीनगर।
5: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा। BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी MGM यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
6: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
7: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26 MGM University and 6 Sidco. Visit mgmu.ac.in, call 9503 08 2913.

नमस्कार आदाब, आरजे अदनान आपके साथ है। और आज मोहम्मद रफी साहब की डेथ एनिवर्सरी है, तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं #दास्तान-ए-रफी। और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद रफ़ी साहब का और लता मंगेशकर जी का एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, और अक्सर उनके ऐसी नोकझोंक हुआ करती थी। मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े अच्छे अच्छे दोस्त थे, चाहे फिर वो अपने कॉम्पिटिटर हो या फिर अपने साथ गाने वाले सिंगर हो, सभी के साथ उनकी बेहद अच्छी दोस्ती थी। और लता मंगेशकर जी के साथ भी उनकी बहुत ही प्यारी दोस्ती थी, लेकिन लता जी के साथ उनकी अक्सर नोकझोंक रंजिश हुआ करती थी। लेकिन एक बार एक झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि 6 साल तक दोनों ने आपस में बात ही नहीं की थी, और झगड़े का रीजन था रॉयल्टी को लेकर। लता जी चाहती थी कि गाना अगर हिट हो जाए तो प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा सिंगर्स को भी मिलना चाहिए, लेकिन मोहम्मद रफी साहब का कहना थोड़ा अलग था। उनका कहना था कि एक बार गाना गा दिया तो गा दिया, हमें पैसे मिल गए बस, प्रॉफिट में से कोई भी पैसा नहीं चाहिए, पूरा की पूरा प्रॉफिट का पैसा म्यूजिक कंपनी को मिलना चाहिए। ये झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि साथ में इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाने के बावजूद भी दोनों ने 6 साल तक आपस में बात नहीं की। 6 साल बस काम की बात, गाने की ही बात, उसके सिवा कोई भी बात नहीं हुई इन दोनों में 6 साल तक। फिर क्या, एसडी बर्मन जी बीच में आ गए, जिन्होंने 6 साल के बाद ना तो एक म्यूजिक नाइट का अरेंजमेंट किया, सिर्फ इसलिए कि रफी साहब और लता जी के बीच में जो झगड़ा था वो सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन 6 साल तक जिन्होंने आपस में बात नहीं की, बस साथ में रिकॉर्डिंग करते थे, ना कोई स्टेज शो ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं किया, तो इन दोनों को मनाना भी एसडी बर्मन साहब को बहुत मुश्किल था। जैसे तैसे दोनों मान गए और स्टेज पर दोनों ने साथ में गाना गाया। फिर क्या, संगीत के साथ सारी रंजिशें दूर हो गई, और इस कॉन्सर्ट के बाद दोनों में फिर से एक बार दोस्ती हो गई, और दोनों ने काम के सिवा 6 साल के बाद फिर से बात करना शुरू किया। सब कुछ ऐसी ये प्यारी सी रंजिशों की कहानी थी लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब के बीच में। चलिए फिर अब इन दोनों की आवाज में ये अगला गाना एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन एमटीएफ 90.8 एफएम।

मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओ।

आपको पता है कि रफी साहब ने ना तो लता जी को चैलेंज किया था। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM और सो दास्तान रफी हम सुन रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब रफी साहब ने ना तो लता जी को एक चैलेंज किया था। लता मंगेशकर जी का नाम 70 के दशक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, क्योंकि लता जी ने उस दौर में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए थे। लेकिन रफी साहब का ऐसा मानना था कि उन्होंने उनसे भी ज्यादा गाने गाए हैं। मोहम्मद रफी जी ने एक चिट्ठी लिखी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को और कहा कि मेरे भी गाने गिने जाए, क्योंकि मैंने 26,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। और फिर इस चिट्ठी का जवाब आया और फिर रफी साहब के गाने गिने गए, तो तब 25,000 से भी कम गाने रफी साहब ने उस दौर में गाए थे। फिर बड़ी ही विनम्रता के साथ उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था और अपनी गलती उन्होंने मान ली थी। बट आगे चलकर ये जो नाम था ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लता मंगेशकर जी का, ये उनसे हाथ से निकलकर आशा जी के नाम हुआ था। तो चलिए फिर से एक बार एंजॉय करते हैं लता मंगेशकर जी और रफी साहब जी की आवाज में अगला सुपरहिट गाना। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

दास्तान रफी में आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम और मोहम्मद रफी साहब की बात हम कर रहे थे। वैसे मोहम्मद रफी साहब का जो मिजाज था ना, तो बड़ा ही शर्मिला था। ना किसी से ज्यादा बातचीत और ना ही किसी से कोई लेना देना था। ना शराब पीते थे, ना सिगरेट पार्टियों का शौक था, ना ही देर रात तक घर से बाहर रहते थे। इतनी सिंपल सी उनकी आदतें थी, बस अपना काम और अपने दोस्त, बस इसी में उनकी जिंदगी थी। और तो और ताज्जुब की बात तो ये थी कि जब वो किसी संगीतकार के लिए अपना गाना गाते थे ना, तो उससे कभी पैसों की बात नहीं करते थे। सामने से कभी उन्होंने उनकी फीस कभी ऑफर करी ही नहीं थी। बस वो आते थे, अपना गाना गाते थे और चले जाते थे। जितना पैसा मिला उतना काफी था उनके लिए। कभी कभार तो उन्होंने बस 1 रुपया लेकर भी गाना गाया था। इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद इतनी सादगी रफ़ी साहब में थी। मोहम्मद रफ़ी साहब काफ़ी दयालु इंसान थे। एक किस्सा ऐसा था कि उन्हीं की कॉलोनी में ना तो एक विधवा रहती थी, वो बहुत तकलीफ में थी। तो उन्होंने किसी और के नाम से, खुद का नाम तो नहीं डाला था, बट किसी और के नाम से उस पड़ोस में रहने वाली विधवा को पैसे भेजना शुरू किए थे। कई साल तक उस महिला को मनी ऑर्डर मिलता रहा, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई और वहां पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का इंतकाल हो गया है और उनका नाम मोहम्मद रफ़ी था। तब जाके उन्हें पता चला कि ये जो मनी ऑर्डर भेज रहे थे ये कौन थे। तो ऐसे कुछ थे मोहम्मद रफ़ी साहब। चलिए फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में अगला गाना एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

वादा किया था रफी साहब ने कि संगीत का साथ लंबे समय तक देंगे, लेकिन ये वादा अधूरा रह गया। आरजे अदनान आपके साथ हैं ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। मोहम्मद रफी साहब का निधन 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक आने से हुआ था। इंतकाल से बस कुछ घंटे पहले ही रफी साहब ने गाने की रिकॉर्डिंग की थी। ये गाना था फिल्म आसपास का, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है मेरे दोस्त। मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल रमजान के महीने में हुआ था। जिस दिन उनकी अंतिम विदाई हुई थी, सुपुर्द खाक होने वाले उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी। फिर भी उनकी अंतिम यात्रा में कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर खड़े थे और सबकी आंखें नम थी अपने पसंदीदा गायक को विदाई देते हुए। रफी साहब के निधन पर भारत सरकार द्वारा 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया था। उनके इंतकाल के बाद संगीतकार नौशद जी ने कहा था कि कहता है कोई दिल गया, दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पयंबर चला गया, दुनिया से मौसीकी का पयंबर चला गया। खैर, रफ़ी साहब आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संगीत के ज़रिए वो हमेशा हमारे पास है, अमर है।

हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: डॉक्टर इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स, आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology जा UG आणि PG साठी admission मिळवा. BTech आणि MTech Cosmetic Technology साठी MGM University मध्ये Basic and Applied Sciences च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
4: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच

किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए। सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए। आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ। रुकी नहीं सांसे तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ। कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ। मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है। जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला। इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं। जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं। पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है। कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा। मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

के लफ्ज़ कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: हर दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM साथ है।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हज़े

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। गुड इवनिंग यार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा बीता होगा। अब वक्त है थोड़ा आराम करने का, मुस्कुराने का और अपने पसंदीदा गाने के साथ इस खूबसूरत शाम का आनंद लेने का। शाम का समय अपने आप में बहुत खास होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ पल खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप घर लौट रहे हो, परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ समय बिता रहे हो, हम आपके साथ हैं बेहतरीन गीतों और ढेर सारी अच्छी बातों के साथ। तो तैयार हो जाइए एक खूबसूरत संगीत भरी शाम के लिए। अगले गाने का आनंद लीजिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। और आप सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से, कहीं मत जाइए क्योंकि अभी और भी शानदार गाने और दिलचस्प बातें आपका इंतजार कर रही है। बढ़ते हैं अगले खूबसूरत गाने की ओर, ओनली ऑन एमजीएम 94.8 एफएम। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरज मनीषा आपके साथ। कहते हैं संगीत सिर्फ कानों को नहीं बल्कि दिल और दिमाग को भी सुकून देता है। जब हम अपने पसंदीदा गाने सुनते हैं तो मन हल्का महसूस करता है और दिन भर की थकान धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी वजह से संगीत को एक तरह की म्यूजिक थेरेपी भी माना जाता है। मधुर धुनें तनाव कम करने, मन को शांत रखने और सकारात्मक सोच बढ़ाने में मदद कर सकती है। चाहे आप काम से लौट रहे हो, पढ़ाई के बाद आराम कर रहे हो या बस कुछ पल अपने लिए निकालना चाहते हो, अच्छा संगीत आपका बेहतरीन साथी बन सकता है। तो क्यों ना इस शाम कुछ मिनट अपने लिए निकाले जाए, मोबाइल की भाग दौड़ और रोजमर्रा की चिंताओं से थोड़ा दूर होकर सिर्फ संगीत का आनंद लिया जाए। हो सकता है एक प्यारा सा गीत आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए और आपका मूड भी बेहतर कर दे। तो आइए इस खूबसूरत शाम को और भी सुरीला बनाते हैं। अगले गीत का आनंद लीजिए, मन को शांत रखिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इन योर फेवरेट शो दिल से, क्योंकि अच्छे संगीत के साथ हर शाम बन जाती है और भी खास। ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का समय हो और साथ में कुछ हल्का फुल्का और स्वादिष्ट खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आज शाम के नाश्ते में क्या बनाया जाए तो एक आसान और मज़ेदार ऑप्शन है मेरे पास और वो है मसाला पापड़। करारा पापड़, उस पर बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, चाट मसाला, नींबू का रस, बस तैयार हो गया स्वाद से भरपूर मसाला पापड़। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। अगर परिवार या दोस्तों के साथ शाम की चाय चल रही हो तो मसाला पापड़ उस पल को और भी खास बना देता है। बातें भी होती रहती है और स्वाद का मज़ा भी बना रहता है। तो आज की शाम चाय के साथ एक प्लेट मसाला पापड़ ज़रूर आजमाइए। हो सकता है ये छोटा सा नाश्ता आपकी शाम को और भी यादगार बना दे। और अब इस स्वाद भरी बात के बाद आइए सुनते हैं एक शानदार गीत। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि संगीत और मुस्कान का ये सफर अभी जारी है। आप लोग कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम जितना सुहाना लगता है उतना ही सावधानी रखने का भी समय होता है। अक्सर हम अपने घर या आसपास बारिश का पानी जमा होने देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जमा हुआ पानी मच्छरों के पनपने की सबसे अच्छी जगह बन जाता है। इससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि घर की छत, बाल्टी, गमले, कूलर या आसपास कहीं भी पानी ज़्यादा देर तक जमा न रहे। अगर आपके आसपास कहीं पानी भरा हुआ है तो उसे निकालने की कोशिश करें या संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दे। छोटी सी सावधानी आपके परिवार पूरे मोहल्ले को सुरक्षित रख सकती है। याद रखिए, बारिश का आनंद ज़रूर लीजिए लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं। साफ सफाई रखिए, पानी जमा न होने दे और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखे। इसी संदेश के साथ अब समय है कुछ और भी अमेजिंग गाने सुनने का इन योर फेवरेट शो जिसका नाम है दिल से। मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवा और हरियाली तो लाता है, लेकिन हम सावधानी न रखें तो कुछ बीमारियां भी साथ लेकर आता है। इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार, सर्दी जुकाम और पेट से जुड़े परेशानियां होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले अपने घर और आसपास कहीं भी पानी न जमा होने दें, क्योंकि यही मच्छरों के पनपने की सबसे बड़ी वजह बनता है। पीने के लिए हमेशा साफ और उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करें। बाहर का खुला या बासी खाना खाने से बचें। मैं जानती हूँ कि बाहर खाने का बहुत मन करता है हमारा, और स्पेशली बारिश में, लेकिन कभी कभी बाहर का खाना अवॉइड करना स्पेशली इस मौसम में बहुत ज़रूरी है। बारिश में भीग जाए तो घर पहुँच कर जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहन ले, और अगर बुखार, शरीर में दर्द या लगातार कमजोरी महसूस हो तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह जरूर ले, क्योंकि अगर हम घर में ही इलाज ढूंढने लगे तो कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं और फिर बहुत देर हो जाती है। इसीलिए अगर जरूरत पड़े तो प्लीज डॉक्टर से सलाह जरूर ले। थोड़ी सी सावधानी हमें और हमारे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। बारिश का आनंद लीजिए, लेकिन अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। इसी अच्छे संदेश के साथ अब वक्त है एक प्यारे से गाने का। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MG 94.8 FM। साथ है तो बात है।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजी मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम हर किसी को पसंद होता है। ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और बारिश की फुहारे मन को खुश कर देती है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोशिश करें कि बारिश में ज़्यादा देर तक भीगने से बचे। अगर भीग जाए तो घर पहुंचकर तुरंत सूखे कपड़े पहन ले। बाहर जाते समय छाता या रेनकोट साथ रखे। खाने पीने का भी खास ध्यान रखे। बाहर का खुला या बासी खाना खाने से बचे और हमेशा साफ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिए। घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दे, क्योंकि इससे मच्छर पनपते हैं और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल सकती है। बारिश के दिनों में सड़कें फिसलन भरी हो जाती है, इसलिए चलते समय या गाड़ी चलाते समय सावधानी रखे। बिजली के खंभों, खुले तारों और पानी भरी जगहों से भी दूर रहे। दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को और सुरक्षित और स्वस्थ रख सकती है। बारिश का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन अपनी सेहत और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखिए। इसी प्यारे से मैसेज के साथ अब वक्त है कुछ और शानदार गाने सुनने का। आप सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अब वो समय आ गया है जब हमें आपसे विदा लेनी होगी। उम्मीद है कि आज की ये शाम आपके लिए संगीत, मुस्कान और अच्छी बातों से भरी रही होगी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यही साथ और प्यार हमें हर दिन आपके लिए कुछ नया और बेहतर लेकर आने की प्रेरणा देता है। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए और हर दिन कुछ पल अपने लिए भी जरूर निकालिए। छोटी छोटी खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अगर आज का कोई गाना या कोई बात आपको पसंद आई हो तो उसे अपने अपनों के साथ भी जरूर साझा कीजिए। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िए हमारे साथ ऑन माई इंस्टा हैंडल। मेरी इंस्टा आईडी है rjmanisha_ एंड उसी के साथ आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज पे भी हमें टैग कर सकते हैं, दैट इज mjim90.8fm। और उसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई शाम, नई जोश, नई बातों और आपकी पसंदीदा गानों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू

उम्र भर दिल में एक हंसी याद रही, सदियां बीत गई पर बात याद रही, न जाने क्या बात थी उनमें और हम में, न जाने क्या बात थी उनमें और हम में, सारी महफिलें भूल गई, बस आवाज याद रही, बस आवाज याद रही। सो ये आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की।

0: वो कहते हैं ना कि यार कुछ कुछ सिंगर ना तो अमर हो जाते हैं और उनकी आवाज हमारे दिल में हमारे जहन में एक अलग सा घर बना लेती है। चाहे फिर कितने भी साल बीत जाए, कितने भी सदियां बीत जाए, वो आवाज हमेशा उतनी फ्रेश हमें सुनाई देती है। तो ऐसी आवाज है मोहम्मद रफी साहब की, वन ऑफ द पॉपुलर सिंगर। क्लासिकल सिंगिंग हो, फिल्मी गाने हो, गजल हो, कव्वाली हो, प्यार भरे गाने हो या तो फिर दुख भरे गाने, इन सभी में माहिरत हासिल थी द पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब को। और आज हम मोहम्मद रफी साहब की ही बात करेंगे, उन्हीं के कुछ किस्से जानेंगे और उन्हीं के गाने आज हम सुनेंगे। सो जी अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। वैसे मोहम्मद रफी साहब का जो मिजाज था ना, तो बड़ा ही प्यारा था और बड़ा ही दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला था। इतना प्यारा मिजाज होने के बावजूद भी लता मंगेशकर जी के साथ थोड़ी बहुत उनकी तूतुमय में हुआ करती थी। आखिर ये तूतुमय में किस बात पर होती थी, क्या थी ये कहानी, क्या था ये किस्सा, बताऊंगा आपको कुछ ही देर में। उसके पहले एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये अगला सुपर हिट गाना, एंड स्टे ट्यून विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: फक्त इंजिनियर नव्हे तर फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
2: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग। सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन,
1: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
2: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप्स,
1: लिमिटेड सीट्स। आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891 7844।
0: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546। MGM यूनिवर्सिटी, इंस्टिट्यूट को छत्रपति संभाजीनगर।
3: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा। BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी MGM यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
4: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंट ची हमी सुद्धा।
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidco. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

क्या आपको पता है कि रफी साहब ने ना तो लता जी को चैलेंज किया था। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM और सो दास्तान रफी हम सुन रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब रफी साहब ने ना तो लता जी को एक चैलेंज किया था। लता मंगेशकर जी का नाम 70 के दशक में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, क्योंकि लता जी ने उस दौर में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए थे। लेकिन रफी साहब का ऐसा मानना था कि उन्होंने उनसे भी ज्यादा गाने गाए हैं। मोहम्मद रफी जी ने एक चिट्ठी लिखी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को और कहा कि मेरे भी गाने गिने जाए, क्योंकि मैंने 26,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। और फिर इस चिट्ठी का जवाब आया और फिर रफी साहब के गाने गिने गए, तो तब 25,000 से भी कम गाने रफी साहब ने उस दौर में गाए थे। फिर बड़ी ही विनम्रता के साथ उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था और अपनी गलती उन्होंने मान ली थी। बट आगे चलकर ये जो नाम था ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लता मंगेशकर जी का, ये उनसे हाथ से निकलकर आशा जी के नाम हुआ था। तो चलिए फिर से एक बार एंजॉय करते हैं लता मंगेशकर जी और रफी साहब जी की आवाज में अगला सुपरहिट गाना। स्टे ट्यून ऑन MGM 90.8 FM।

दास्तान रफी में आरजे अदनान आपके साथ हैं ऑन एमजीएम 90.8 एफएम और मोहम्मद रफी साहब की बात हम कर रहे थे। वैसे मोहम्मद रफी साहब का जो मिजाज था ना, तो बड़ा ही शर्मिला था। ना किसी से ज्यादा बातचीत और ना ही किसी से कोई लेना देना था। ना शराब पीते थे, ना सिगरेट पार्टियों का शौक था, ना ही देर रात तक घर से बाहर रहते थे। इतनी सिंपल सी उनकी आदतें थी, बस अपना काम और अपने दोस्त, बस इसी में उनकी जिंदगी थी। और तो और ताज्जुब की बात तो ये थी कि जब वो किसी संगीतकार के लिए अपना गाना गाते थे ना, तो उससे कभी पैसों की बात नहीं करते थे। सामने से कभी उन्होंने उनकी फीस कभी ऑफर करी ही नहीं थी। बस वो आते थे, अपना गाना गाते थे और चले जाते थे। जितना पैसा मिला उतना काफी था उनके लिए। कभी कभार तो उन्होंने बस एक रुपया लेकर भी गाना गाया था। इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद इतनी सादगी रफ़ी साहब में थी। मोहम्मद रफ़ी साहब काफ़ी दयालु इंसान थे। एक किस्सा ऐसा था कि उन्हीं की कॉलोनी में ना तो एक विधवा रहती थी, वो बहुत तकलीफ में थी। तो उन्होंने किसी और के नाम से, खुद का नाम तो नहीं डाला था, बट किसी और के नाम से उस पड़ोस में रहने वाली विधवा को पैसे भेजना शुरू किए थे। कई साल तक उस महिला को मनी ऑर्डर मिलता रहा, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई और वहाँ पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का इंतकाल हो गया है और उनका नाम मोहम्मद रफ़ी था। तब जाके उन्हें पता चला कि ये जो मनी ऑर्डर भेज रहे थे ये कौन थे। तो ऐसे कुछ थे मोहम्मद रफ़ी साहब। चलिए फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में अगला गाना एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

वादा किया था रफी साहब ने कि संगीत का साथ लंबे समय तक देंगे, लेकिन ये वादा अधूरा रह गया। आरजे अदनान आपके साथ हैं ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। मोहम्मद रफी साहब का निधन 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक आने से हुआ था। इंतकाल से बस कुछ घंटे पहले ही रफी साहब ने गाने की रिकॉर्डिंग की थी। ये गाना था फिल्म आसपास का, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है मेरे दोस्त। मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल रमजान के महीने में हुआ था, जिस दिन उनकी अंतिम विदाई हुई थी, सुपुर्द खाक होने वाले उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी। फिर भी उनकी अंतिम यात्रा में कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर खड़े थे और सबकी आंखें नम थी अपने पसंदीदा गायक को विदाई देते हुए। रफी साहब के निधन पर भारत सरकार द्वारा 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया था। उनके इंतकाल के बाद संगीतकार नौशद जी ने कहा था कि कहता है कोई दिल गया, दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पयंबर चला गया, दुनिया से मौसीकी का पयंबर चला गया। खैर, रफ़ी साहब आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संगीत के ज़रिए वो हमेशा हमारे पास है, अमर है।

0: आता इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844.
2: क्या ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी, इन्स्टिट्यूट गोचत्रपति संभाजीनगर.
3: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी MGM यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
4: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स

अपना छत्रपति संभाजीनगर स्मार्ट तरीके से स्मार्ट डेवलपमेंट की तरफ गुजर रहा है ऐसा नजर आ रहा है। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अपने शहर को स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लाता ही है जिससे अपना शहर तरक्की कर सके। और आपने कुछ ऐसे बसेस भी देखे होंगे, स्मार्ट सिटी बसेस जो कि इलेक्ट्रिक है एंड अपने शहर के रास्तों पर भागती है, आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी। और बहुत अच्छी ये बसेस है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर तकरीबन 8 और स्मार्ट सिटी बसेस अपने शहर में आने वाली है जो कि स्मार्ट तरीके से अपने शहर के रास्तों पर चलती हुई आपको नजर आएगी। और ये पूरी 35 बसेस है जो कि अपने शहर में आने वाली है 15 अगस्त के पहले पहले तक, और 15 अगस्त के बाद ये अपने शहर के रास्तों पर हमें भागती हुई नजर आएगी। तो ये स्मार्ट सिटी बसें स्मार्ट तरीके से वो भी इलेक्ट्रिक वाली अपने शहर में अब लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए काम करने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो भाई, आप स्मार्ट सिटी बसेस ला रहे शहर में अच्छी बात है, लेकिन अपने शहर के रास्ते स्मार्ट कब बनेंगे वो भी एक बड़ा सवाल है। स्मार्ट सिटी बसेस गड्ढों के रास्तों से चलेगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो स्मार्ट डेवलपमेंट के लिए स्मार्ट रास्ते भी बनाना बहुत जरूरी है। बट ये रास्ते स्मार्ट कब बनेंगे ये तो ऊपर वाले को भी नहीं पता, तो हमें क्या ही पता होगा। खैर, मनपा को जब पता चलेगा तब वो बनाएगी ही। फिलहाल आपको वेट नहीं करवाता हूँ सुपर डुपर हिट गानों के लिए, अभी प्ले करता हूँ। स्टे ट्यून, कुछ देर में लौट कर आऊंगा। तब तक एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

बरसात के मौसम में पहाड़ों पर जाना हर किसी को पसंद है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर अब आपको नो एंट्री मिलने वाली है। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिस्निंग एमजीएम 90.8 FM। आपल्या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये अनेक असे ठिकाणे आहेत ज्या ठिकाणी आपण पावसाळ्यात जातो, एन्जॉय करतो, ट्रेकिंग करतो। यासोबतच ऐतिहासिक बौद्ध लेणी आपल्या शहरात आहे, हनुमान टेकडी आहे आणि विद्यापीठ परिसरातील डोंगर रांग आहेत। या ठिकाणी सुद्धा अनेक जण जात आहेत आणि पावसाळ्यात एकदम मस्त एन्जॉय करतायत, रील्स वगैरे काढतायत। करतायत ना हे सगळं, ऐसा आप भी करते हो ना। सो इन जगहों पर ना तो आप नो एंट्री होने वाली है, बिकॉज देखो इस जगह पे बहुत सारा यूथ आता है और कुछ कुछ ऐसे भी लोग आते जो यहाँ पर आकर पहाड़ों पर बैठकर दारू वारू पी रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे। ये सब चीजें वहाँ पर हो रही थी और क्राइम भी बढ़ रहा था। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ऐसा फैसला लिया है कि बौद्ध लेनी एंड हनुमान टेकड़ी इस एरिया में शाम 6 बजे के बाद टोटली नो एंट्री रहने वाली है। शाम 6 के बाद ना तो आपको यहाँ पर जाना मना है, वरना आपने अक्सर देखा होगा कि लेट नाइट 11-12 बजे तक लोग हनुमान टेकड़ी के ऊपर बैठते थे और लेट नाइट आते थे, फिर उसके बाद दारू सिगरेट ये सब चीजें वहां पर पार्टी चलती ही थी और इससे फिर आसपास के लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा था, वहां पर जो घूमने आते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रहा था एंड क्राइम ना बढ़े, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। तो आप लोग भी याद रखिए, अगर आपका भी प्लान होगा कि चलो यार लेट नाइट शाम में रात में हम ऐसे टेकड़ी पर जाकर बैठेंगे तो मत जाइएगा, पछताना पड़ेगा आपको और पुलिस प्रशासन के वहां पर गश्त रहने वाला है। आपको वहां पर नो एंट्री, आपको क्या किसी को भी शाम 6 बजे के बाद हनुमान टेकड़ी एंड बौद्ध लेनी इस एरिया में नो एंट्री रहने वाली है। तो ये याद रखिएगा, बाद में मत कहना कि यार मुझे तो पता ही नहीं था, अब पता चला गया तो समझिए। एंड बाकी तो कहीं और घूमिएगा और सुनते रहिएगा।

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute Chhatrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit kampanyanmadhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidco. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

फस्ट बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM साथ है

0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: खुशियों की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।